ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा, ओम नमश्चंडिकाए

ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा ओम नमश्चंडिकाए स्वाहा ओम नमश्चंडिकाए

चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा ओम नमः चंडिकाय स्वाहा।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

कैलाशपति शिव शंकर कहते हैं, हे देवी, प्रभु रामचंद्र जी की मुखार बिंद की बानो, ऐसे पूछता हूं।

चाहते हैं, जो परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो, तो मेरे वचन श्रवण कर दृढ़ता धारण करो। जो कुछ मैंने कहा है वह सुलभ और सुखदायक मार्ग है। मेरे भक्ति करनी ही श्रेष्ठ या पुराण और वेदों ने गाया है। श्री रामचंद्र जी एक्सपीरियंस, माय एडवाइस टू यू इज टू बी हैप्पी या अनहियर आफ्टर ओबे दीज इंस्ट्रक्शन विच आई एम अद उद्देश्य टू गिव यू द लेसन्स। रिसीव देम ऑल, determined to put them to practice. It's so simple, so enjoyable to give you all that you need. The Vedas, the Purana all declares, and it continues.

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते, जाते

शौहरत से गया, भरी महफिल में इज्जत से गया, बहुत हवा में था, यारों में बाजी मार गया, मेरी जीत हुई ये हार गया, मेरी जीत हुई ये हार गया, मेरी जीत हुई।

0: हमारे लिए क्या किया?
1: क्या किया? बाप ने हमें घर से निकाला?
0: निकाला।
1: बंद किया किस्मत का ताला?
0: ताला।
1: छीन लिया मुझसे निवाला?
0: निवाला।
1: बंद के बाद

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: गौरी जरबती यसु नोजी मोरी मोरी
1: धी टक टक टक।
0: कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी
1: धी टक टक टक।
0: काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे हे हे हे।

0: तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा टिम्बक टू चुम्बक तू
1: भला बच बच के रहू
0: गे गे गे गे ली जा रहा हूँ

0: के जो कोई आके तू लट बिखरा के नजर को बचा के अंधेरा किए जा जा जा गे गे गे गेली जरा टिपक टू
1: काठमांडू काठमांडू गेली भू।

बोलिए प्रेम से श्री आदि शक्ति देवी माता की जय। उमापति महादेव की जय। श्रोता लोग आप लोग खड़ा हो जाइए आरती के लिए। ओ

0: जय सनातन धर्म की जय।
1: आप लोग अपना आसन लीजिए। प्लीज हैव योर सीट डिवोटीज। वंस मोर वी से अ वेरी स्पेशल वेलकम टू एवरीबॉडी, भैया जी एंड ऑल योर वंडरफुल पीपल फॉर बीइंग हियर। दोज ऑफ यू हु कुड नॉट रीच, यू कुड बी एबल टू लिसन एंड एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ आदि शक्ति देवी माँ। So without any delay, let us bring our thoughts together and we think of Bhagwan, asking for blessings, that Bhagwan, be pleased with our puja, shower blessings upon us, help us that our prayer become a fruitful one, be our guiding light, and may your katha be able to make us into all better beings, that we may be able to come to you in all that we do, offer to you our love and devotion in every moment of life, and may we be able to cherish the opportunities that you bless us with. We bow to you, O Bhagavan. Be pleased with our prayer.